चिंतित थी वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई, 7.8% क्वार्टरली

एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना होने को तैयार है। ट्रेन नंबर 1221A चंडीगढ़ कोचीवेली केरला संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस इज रेडी।